तिर नर के रह हो जो जाकी एक बाडू चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पुण जाय अर्ध सहस पुण तीन कह जाय भाद्रव सुदी अष्टमी रारा तीरस्तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पख्याने तिरंग त्रित्रयी मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त आप जू दोहरा दास जान कर दास पारू कीजा कृपा अपारू आप हाथ दर राख मोहे मन क्रम बचन बिचारू चौ पाई मैं नगने सप्रथ मनाऊ किशन बिशन कबू न त्याऊ कार सुने पहचान न तिन सौ लिव लागी मोरी पाग इन सौ माह कार रखबार हमारू माह लो मैं किंकर थारू अपना जानू करू रखबारू बाह गह की लाज विचार अपना जानू मुझे प्रत परियाए चुन चुन सत्तर हमारे मरिया देग तेग जग में दो चले राखिया मोहे और नंदलाए तुम माम करो सदा प्रतपारा तुम साहे मैं दास निहारा जान अपना मुझन वाजो आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीबन वाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हर परा माया अनदवार तोहे अपना जानो करो प्रतपारा तुम साहे मैं किंकर थारा दास जान दें हाथ उबारू हमरे सब बैरियों संघारू प्रथम तरों भगवत को त्यानाऊ बहुर करों कविता विदनाना कृष्ण जथा मत चरित्र चारू चूक होए कबल्यो सुधारो कब्यो बात दोहरा जो निज ब्रह्म सो कहू जग माही जो ते प्रभ को त्याय है अंत स्वरूप को जाहि दोहरा हर हर जन दोई एक है बेबिचार कछ नाहे जल ते उपत रंग जो जल ही विखस माय दोहरा जब आयस प्रभ को पयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा सुन छेपते सब हूँ कैत सुनाई काबा चंद दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याई पंथ चला तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा।

पुरखा पयो जिसका सब साधारो जे को खावै जे को पहुँचा तिसका होय उधारो ये वस्त तजी न जाई नित नित रख और तारो।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚੇਹਨ ਅਰ ਬਰਣ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੜੇ ਭੇ ਕੋ ਕਹਿਣ ਸਿਕਤ ਕੇਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤਿ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿੱਤੋ ਕਹਿ ਜਾਇ ਕੋਟਿੰਦਰ ਦਰਾਂ ਸਾਹੇ ਸਹਾਣ ਗਣ ਜਾਇ ਤ੍ਰਿਪਾਣ ਮਿਹੀ ਪਉ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥਕ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣ ਸਮਤ ਭੁਜੰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਢਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਏਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਿਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਦਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਿਰਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਮੇ ਨਮਸਤ ਸ੍ਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਜਬੇ ਨਮਸਤਾ ਸਤਬੇ ਅਦੀਸੰਗ ਦੀਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਬਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮ ਸਰਬ ਤਾਪੇ ਨਮ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਭਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਮਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੌਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਤਰੀ ਛੰਦ ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਭੂਆ ਲੇਖਾ ਭੀਖਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮੈ ਤਿਹਿਆ ਪਿਹਿਆ ਜੀਤੈ ਪੀਤੈ ਤਿਰਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗਿਆ ਸਰਗਿਆ ਨੀਲਿਆ ਨਾਦੇ ਅਜੇ ਹੈ ਜਦ ਹੈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰਣ ਹੈ ਭੂਤੈ ਭਰਣੈ ਗੰਜੈ ਭਾਂਜੈ ਅਚੂਜਿਆ ਝਾਂਜਿਆ ਮੀਕੈ ਪੀਕੈ ਧੰਦੂ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਸੂਜਿਆ ਕਾਲ ਹੈ ਜਲ ਲਾਹ ਹੈ ਜਾਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਰਸਰੀ ਕੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਸਮ ਹੈ ਗਮ ਹੈ ਜਮ ਹੈ ਭੂਤਿਆ ਸੂਤਿਆ ਲੋਕੈ ਸੋਕੈ ਕਰਮ ਹੈ ਭਰਮੈ ਜੀਤੈ ਪੀਤਿਆ ਅਬਾਹ ਹੈ ਗਾਹ ਹੈ ਬਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦੇ ਨਮੋ ਸਰਵਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਭੇਖੀ ਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਅਰੰਗੀ ਅਨਾਥਨ ਸੰਗੀ ਪਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤੇ ਸਮਸਤੀ ਵਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕਾਂਗ ਬਣਾਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸੁਰੰਗ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸੁਰੰਗ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸੁਰੰਗ ਪਰਮ ਵਿਦੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੀ ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਬਾਣੀ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਅਪੇਖੀ ਅਭਰਮੀ ਭੋਗੀ ਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸੁਰੰਗ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੀ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇ ਦੇਵੇ ਸੋ ਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹੁ ਨਮੋ ਭੂ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੀ ਨਮ ਮਾਨ ਮਾਨੀ ਨਮ ਰੋਗ ਰੋਗੀ ਨਮਸਤੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨੰਗ ਨਮ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰਗ ਨਮ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰਗ ਨਮ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ ਨਮ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰੰਗ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਰਵੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਅਨੂਪੇ ਰੂਪੇ ਸਮਸਤ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ ਅਧ ਉਰ ਦਰਦੰਗ ਅਗੰਗ ਅਗਰਤਾ
परम परम परमेश्वर ब्रह्म पुरुष पालन सदा सर्वदा सदाता दयालु छेदीय भेदीय नाम काम समस्त अपराधी समस्त स्थान तेरा जोर चात्री छंद जले हैं थले हैं पीते हैं पे हैं प्रभु हैं जुग हैं दिशा पे सैंग पुजंग प्रिया छंद अगादी अबादी आनंदी स्वरूपे नमस्त मारने समस्त निदाने नमस्तवंग निर्नाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साजे नमो साह साह नमो बाह बाह नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतारंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृष्ण नमो त्रिरंगे त्रिभंगे अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे पिजे स्मसंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सदंग निवासी चरपट छंद त्वा प्रसाद अमृत कर्म अमृत धर्मे अखल योगी अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल त्रिमंगला कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग युक्तांग सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल छंद त्वा प्रसाद आदि रूप नाद मूर्त जौन पुरख पार सर्व सवृत्य आदि रूप नाद मूर्त जौन पुरख पार सर्व मान त्रिमान देव भेव आदिदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जत्थर तत्र विराजि ही अवधूत रूप लिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नारेख है आदि पुरख आधार मूर्ता जौन आदि अशेख देश और नपेश जाकर रूपरेख नाराग जतर तत्र दिशा विशाह फैल अनराग नाम काम विहीन पेख तम न जाय सर्वमान सर्वत्र मानस दय मनता हे एक मूर्त नेक दर्शन कीन रूपा नेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक दे भेव न जानी जेह भेद और कतेब रूप रंग न जात बासो जानी कह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्कर बकर फिराए चतर चाक मान प्रतीन लोग चौदह के बिखाए जग जापई जह जाप आद देव अनाद मूर्त आपे सब जिथाप परम रूप प्रणीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सवृत्यम भव गण भजन हारु कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सु परम रथ भूत लख पेश अंग राग न रंग जाक जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भजन मुक्त दाय काम आप रूप अमीक अनुसूत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंगहीन अभंग नात्म एक पुरख उपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपारु सर्वगंता सर्वहंत सर्वजन पेख सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र जन ही जेह रूप रंग अरलेख परम वेद पुराण जा कह नीत भाग नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवई बचित माध भर छंद ता प्रसाद गुण गण दर महिमा पारु आसन भंग उपमानंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आजन बाहु साहन साहु राजन राज उपान अनुपान देवन देव महान इंद्रन इंद्र बालन बाल रंकन रंक कालन काल अनभूत अंग अभंग गत मित दार अनभूत अंग अभंग गत मित पारु गुण गण उदारु मोन गण प्रणाम निर्भय निकाम आत्मदत्त प्रचंड मित गत अखंड आलिशा कर्म अदृष्टा धर्म सर्वा प्रणाडे अंडन बडें चाचरी छंद ता प्रसाद गोबिंदे मकंदे उदारी अपारी हरियं करी नामे अकामे भुजंग प्रयात छंदे चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय अजर्म अजाई न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतीस अदिश अदृश अकृश भगवती छंद प्रसाद काते के अछज दिस के अभिज पिस के अगंज कर्म के अपंज परम के अभिज लोक के अदत सुख के बदूत ग्रहण के बभूत ग्रहण के राजन प्रभ के त्रमंग तुझ
के अशोक वर्ण के सर्व पर्ण के जगतन कृति के छत्रंग छत्रिय के ब्रह्म स्वरूप के अनुपनुप के आदि के अपे के चतरंग विहीन के एक अधीन के रोजी रजाकारी मारे हाका के पाक बया बे के गैबल गैबे के अफुल गुनाह के साहन साह के कारण कुणिंद है के रोजी दहंद है के राज करी मैं के कर्म करी मैं के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राणाई के सर्वत्र प्राणाई के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र माने सदैव प्रधान के सर्वत्र जाप्याय के सर्वत्र थाप्याय के सर्वत्र पानाय के सर्वत्र मानाय के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वंग कलीम के परमंग अफीम के अकल अलम के साहब कलाम के उस नाल वजू है तमाम हमेशा सलाम सली खत्मदाम गरीबर सकस्ता गरीबर प्रस्ता बलांदर मकाना जिमिर जमाना तम जल तमाम रुजल दाना हरि फल जीमर जाग जगीना अनेक तरंग है भेद है भंग है जी जल नवाज है गरीब खराज है निरुक्त स्वरूप है तन मुक्त भूत है पर भुगत प्रभा है सुजुगत सुधा सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है गाद हनुप है ओ अंग आद रूप है नाथ रूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गु त्रिबादे अगंजे अगाजे शुभंग सर्वभागे सुसर्व अरणा गये त्रिभुगत स्वरूप है छेज है छूत है के नरक प्रणास है अछेज है छूत है के नरक प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभा सदैव सदा विभुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चात्री छंद अपंग है अनंग है अपेख है भेख है अपेख है लिख है परम करम है अनाद है जुगाद है अजय है अब है भूत है तूत है अनास है दास है तंद है बंद है भक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है चिंत है सुनंत है अलिख है अदिख है अलिख है भेख है ढा है ग है सम है गम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है जात है जाद है चरपड़ छंद प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग कर्म सर्वंग धर्म सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता निशावल छंद प्रसाद नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगंग विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्रा न ताता न माता न जाता न पाता न साकं श्रीकं अमितो अमीकं सदैव प्रभ अजय है अजा है भगवती छंद प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है मेसर सलाम है समस्त कलाम है के साहिब दिमागे के हुसन त्यागे के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दिहंद है के राज करहिंद है करीम मुल्क माल है कुसन जमाल है गनी मुल्क राज है हरिबल गरीबल गनी मुल्क राज है गरीबल नवाज है हरिफुल सकन है हरासल फकन है कलंक प्रणास है समस्त निवास है अगंजल गनीम है रजाय करीम है समस्त जुबा है के साहिब करा है के नरक प्रणास है बहस्तल निवास है के सर्वल गवान है हमेशर रवान है तमामल तजीम है समस्त अजीज है परम परम ईस है समस्त अजीस है देशल लेख है भेसल भेख है जिमिन जमा है अमिकल मा है करी मुल्क माल है के जोरत जमाल है के अतलंग प्रकाश है के मित्तव सुबास है के अजब स्वरूप है के मित्तव विभूत है के मित्तव प्रसाह है के आत्म प्रभ है के अतलंग अनंग है के मित्तव भंग है मध पार छंद प्रसाद मौन मन प्रणाम गुणगन मदाम अरबर गंज हरण प्रपंज अनगन प्रणाम।

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सोतरमंग बेपूते सदा सचदानंद स्तन प्रणासी करी मुल्क निंदा समस्तल निवासी अजायब भूते गजायब गनीमे हरियम करियम करिमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सजयम पहु सबंग सर्वदा सर्वजुगते

अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंद सब तुद पाए, एक वेख परसन आया। लब लो अहंकार चुका, सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਹਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ।

पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, पड़ी है जेते बरस।

0: को जाए
1: रखन हार त्याए
0: नरबो जबे सगल भ मिटाए
1: कृपा ते प्राणी छूटे
0: परबरा के दिस नाहि दूखा
1: मन मन होवे सुख
0: चिंता जाए मिटे अहंकार
2: जन को कोई न पहुंचन हार
0: हरि ऊपर ढाडा गुर सूरा
2: नानक के कारज पूरा
0: मत पूरी अमत जागी दृष्ट
1: दर्शन पेख उत्तर श्रेष्ठ
0: चरण कमल जाके अनूप
1: दर्शन सुंदर रूप
0: तन सेवा सेवक परवान
1: अंतर जामी पुरख प्रदान
0: मन बसे होत निहाल।